0: for a cars program di rata de taxi pe ce are el.
1: हाँ जी दस्तकार जी खालसा बीमा साहब के सुन वाले सारे ही श्रोतियां जगदीप सिंह संधू वालों बड़े प्यार सत्कार नाल सत श्री अकाल और असी इस शहीदी पंद्रवाड़ा जो दिसंबर का आखिरी दो वीक है उस संबंध में वापरिया सिख इतिहास की घटनावां का जिक्र कर रहे हैं और उन घटनावां का जिक्र करते हुए कल असा एक गल कही सी आनंदपुर साहब दे किले तो निकलन दे कारण दी गल व्याख्या कीती सी असी और एक सज्जन ने भी कहा सी कि ओदे होर भी कारण हो सकते ने या महासंघ दे संबंध च जदों असी गल कीती सी उन्होंने भी कहा सी भी होर कारण हो सकते ने बस क्योंकि मैं तो इस गल दा वैसे ही हामी हां कि हर गल तर्क संगत होनी चाहिए है कि हो सकती कि नहीं हो सकती या एदे विच कुछ होर भी हो सकता है।
2: बिलकुल डॉक्टर साहब,
1: हां जी जब तक असी वन साइडेड होके किसी गल नूं विचारदे आं भी मैं ही ठीक हां उस वेले असी गलती कर रहे हुंदे आं।
2: बिलकुल
1: और इस गलती दे संबंध विच कल मैं उस तों बाद फिर होर भी इतिहास दी फरोला फराली कीती और उस दे विचों कुछ होर इहो जिहियां बड़ियां अचंभे वालियां गल्लां निकलियां कि जिहड़ियां मैं समझदा भी साडा सिख इतिहास अगर सुनेगा तो एकदम अचंबा होएगा या मनन तैयार नहीं होएगा।
2: जी
1: एक सज्जन ने इतिहास दे विच लिखा आया भी साडे कोल जिस तरह नील नदी दी घाटी नील नदी है ना
2: जी जी बिल्कुल
1: नदी दा 4000 साल पुराना रिकॉर्ड साइंसदाना ने इकट्ठा कीता होया कि एदे च कदों चढ़ा आउंदा है कदों उतरा आउंदा है किस किस तरह एदी जिहड़ी क्रिया है ओह चलदी है नील नदी जिहदे च जहाज भी समुद्री जहाज भी चलदे आ।
2: जी जी मिस्टर दे विच जी
1: सुनिया होना ओदे बारे ज्यादा जी इसे तरह करके एक सज्जन ने कल उस फरोला फराली दे विचों मैनूं इह मिलिया भी लिखिया भी साडे कोल पिछले 200-300 साल दा रिकॉर्ड मौजूद आ कि उस समय दे विच जिहड़ा समा असी दिसंबर दे दिनां दी गल कर रहे हां उस समय दे विच उत्तरी भारत दे विच किते भी हड़ नहीं सी आउंदे ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2: ਜੀ
1: ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਭਈ ਜੇ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭੀ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਾ।
2: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3258 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301 तो हाडे अपने होस्ट

चलन शुरू हो गया। ठीक है, सो सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रा यूट्रिन लाइफ के विच साडा आ जरा क्लेरिकल है हसले की हड्डी है ये बननी शुरू हो जाती है। सो इस तरह करके अलग अलग ढांचा जरा वो बनना शुरू हो जाता है। उस तो बाद असिने कहा यॉक सैक सैक जरा हों ते बाकी स्ट्रक्चर है दो पोल बन जाते हैं उस एग के विच उन्होंने एक पोल जरा सिर बना शुरू करता है ओदी यूनियन होंगी है जी रीढ़ की हड्डी की गल मैं थोड़े नाल कीती है वो साड़ी निशानदेही साड़ी नींह पत्थर रखा गया उस तो बाद हैड बनता है। हुण ये जरा हैड बनता है सानू ए लगता है कि जिवें एवें गोल गोल थप दिता हो किसी ने पर नहीं इन बनाउन वास्ते अलग अलग पीस कुदरत नूं सैट करने पए आ और फिर उन्हां नूं जोड़ लाउन वास्ते कुछ इस तरह का ढांचा बनाना शुरू किया आ कि जिदे करके ए आपस इस तरह फिट हो जान कि बाद वो जोड़ निकल ना सके और उस ढांचे के मुताबिक जिहड़ियां हड्डियां इस सिर नूं बनाउंदियां हन इहनूं गोल करन वास्ते उन्हां दी शकल अलग अलग थावां ते क्योंकि टिशुआं दी जदों आपां गल करी सी ना इह क्या सीगा भी सैल जिहड़े ने हरेक लोड अनुसार अपनी शेप बदलते ने जे इन्हें जोड़ बनाना है तां जे हड्डी बनानी है तां जे जिस तरह की भी गोलाई या लंबाई इस नूं चाहीदी आ ये सैल जिहड़े ने उस तरह का स्ट्रक्चर अख्तियार कर छिड़ेदा है जी छिड़ेदा है अपना रूप बदल लेंदे सैल है जी कहण के मुताबिक ही यह साडा जिहड़ा सिर है ये बनता है और उहदे विच आम तौर ते जिहड़ियां हड्डियां हुंदियां ने आपां पिछे भी मेरे ख्याल प्रोग्राम ते कर चुके सी परी बंधन अज शुरुआती दौर है इस करके मैं फिर इस नूं दोहरा दिया भी एक ते आ मत्थे की हड्डी तुसीं सामने देख दिओ फ्रंटल बोन असीं इहनूं इको हड्डी गिणदे आ इह फ्रंटल बोन हैगी सारा अगला कवर करदी है इसे तरह जे इह फ्रंटल हैगी ते फिर ऑक्सीपिटल होए पिछला पासा कुत्ती दा जिहड़ा एरिया हैगा उह भी होएगा हालांकि कुत्ती का एरिया ते फ्रंटल बोन इन दोहां दी बनतर विच अंतर है। ए उपर वाली हड्डी जिवें कोई ऐताकार कपड़ा होवे ते उस नूं तुसीं फ्रंट बना दिओ मोड़ के ए इसे तरह का हैगा आ जदों के जिहड़ी कुत्ती वाली हड्डी है जिहनूं असीं ऑक्सीपिटल हैगा आ वो भी एक ही हैगी है पर उहदी बनतर दे विचों बहुत सारा चीज बाहर निकलनी रीढ़ की हड्डी च जानी है तो उन्हें एक सुराख रख्या है उहदे विच ठीक है। सो ओनू असीं फोरामन मैगनम कह देने सो इस तरह की इहदा स्ट्रक्चर है एक फ्रंटल की हड्डी है एक साडी जिहड़ी है ऑक्सीपिटल हड्डी हैगी है इसे तरह पिराइटल बोन उपरले पासों गुंबद बनाउन वास्ते गोलाई करन वास्ते साडे कोले दो पिराइटल बोन हैगियां ने एक सज्जे पासे दी आ एक खब्बे पासे दी आ पर जिथे जिथे दूजियां हड्डियां नाल जुड़दियां ने एक दूसरे दे नाल ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿੰਗਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੇਨ ਆ ਕੇ ਫਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਰਾਰੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਘੜੀ ਚੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜੈਕਟ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿੰਗਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਪੈਕਟ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਰਟੀਲੇਜੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਲਪਲੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਟੀਲੇਜੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਿੰਗਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋੜ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪੂਰਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਰਾਈਟਲ ਬੋਨ ਤੇ ਫਰੰਟਲ ਬੋਨ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਰਾਈਟਲ ਬੋਨ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਪੀਟਲ ਬੋਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਖੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਂਟਾਨਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤਾਲੂ ਵਾਲਾ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫਰੰਟਲ ਤਾਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥੇ

0: दर्शन सिंह खक प्रवास रेडियो न्यूयॉर्क फ्रैंकफोर्ट तो थाडे नाल रूबरू हो रहा
1: हैगा उग्रदीप सिंह संधु साहब जुड़नगे ते अज दे प्रोग्राम अपना दो घंटे दा थाडी सेवा च लैके हाजिर हो गए हैं। दोस्तो आजो रल मिल के इस प्रोग्राम दी शुरुआत करते हैं। ते पहला गीत सिंदर कौर प्रकाश कौर जी दा जुत्ती कसूरी।

0: नमस्ते आदाब दोस्तों, तुसी सुन रहे हो भैनों ते भरावो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम न्यूयॉर्क।
1: क्या कहा?

भदुआ चुनरी ले आना, अरे भतीजा के बाजार से भदुआ चुनरी ले आना, याद के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना, यदि फिर भी तू

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM इंडियन टाइम 4:30 AM to 6:30 AM परवाज रेडियो व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3259 732-874-3259 and 856-397-0301 855-397-0301 तो हाडे अपने

नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज़ नमस्ते अदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज़ प्रवास रेडियो मैं हाँ तुहाडा दोस्त ते होस्ट दर्शन सिंह खाका।

Hello. Hello. दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते आदाब तुसी सुन रहे हो दिल दी आवाज मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक तुसी सुन रहे हो प्रवास रेडियो दिल दी आवाज प्रोग्राम लेके ताडे नाल हाजिर हो गए जी न्यूयॉर्क स्टूडियो तो न्यूजर्सी तो मैं हां ताडा दोस्त होस्ट दर्शन सिंह खक प्रोग्राम अज दी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम नु जी अज आपां कुछ गीत सुरेंद्र शिंदा भाजी होना दे सुनांगे पुत जटा दे पहला गाना ताजी सेवा विच उस तो बाद आपां फिर अगला प्रोग्राम जिहड़ा हैगा वह खबरां दा कुछ करांगे फिर डॉक्टर साहब दा प्रोग्राम होएगा दो घंटे दा प्रोग्राम ताजी सेवा विच लैके हाजिर हो गए जी लो जी पेश है पहला गीत

इंडियन टाइम 4:30 AM टू 6:30 AM पर वाज रेडियो। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लवो 732-874-3238 732-874-3259 एंड 856-397-0301 856-397-0301। तो हाडे अपने

परवाज रेडियो प्रोग्राम दिल दी आवाज तुहाडे तक तुहाडे दोस्त अते होस्ट दर्शन सिंह खाक पहुंचाते हैं रोजाना न्यूयॉर्क टाइम 6 PM to 8 PM।

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।